0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार की आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव के रूप में हमें शारीरिक दुख, पीड़ा और कष्ट से भय लगता है। यही कारण है कि हमारे जीवन की प्रार्थना में हम एक विशेष निवेदन यह करते हैं कि ईश्वर हमें विभिन्न तरह की दुर्घटनाओं, विपत्तियों और हानिकारक चीजों से बचाए रखें। हम में से ऐसा कोई भी नहीं जो अपने जीवन में विपत्तियों और मुसीबतों की चाह रखता हो। वर्ष के 22वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठ हमारे लिए दुखों की चर्चा करते हैं। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से अपने ऊपर आने वाले घोर दुख की चर्चा करते हैं। वे ऐसा अपने शिष्यों से एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार करते हैं कि किस तरह उन्हें नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ेगा। एक सच्चे मानव के रूप में यह हमारे लिए यीशु के हृदय में व्याप्त एक भय को व्यक्त करता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने लिए ईश्वर से कृपा की याचना करें कि वे हमें अपने जीवन के दुखों में अपनी योजना को देखने, उन्हें स्वीकारने और उनमें अपनी उपस्थिति को देखने हेतु मदद करें। हम अपने जीवन के छोटे बड़े दुखों को यीशु के दुख भोग की याद करते हुए अपने दैनिक जीवन में साहसपूर्वक वहन कर सकें। हम जीवन में अपने दुखों के कारण हताश व निराश ना हों बल्कि अपने को उस जीवनदायी ईश्वर के विश्वास में अडिग बनाए रखें जहाँ से हमारे लिए जीवन की सारी चीजें सांत्वना, खुशी और प्रेम स्वरूप आती हैं।
1: यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए समझाने लगा, ईश्वर ऐसा न करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक को अपने कर्म का फल देगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे जीवन की दुख भरी परिस्थितियों में सांत्वना का कारण बने जिससे हम उन चुनौती भरी स्थितियों में भी अपने को ईश्वर के संग संयुक्त रख सकें। श्रोताओं, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए दुख के कारण नबी में व्याप्त एक द्विधा भरी स्थिति को व्यक्त करता है जिसके कारण वे ईश्वर के वचनों को घोषित करना नहीं चाहते और ना ही भविष्यवाणी करने की सोचते हैं। लेकिन ईश वचन नबी के अंतरतम में एक धधकती आग बन उसके हड्डी हड्डी में समा जाती है। वह उसे अपने में दबा नहीं रख सकते बल्कि वे वचनों से प्रेरित अपने कार्यों को पूरा करने हेतु आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, यह हमारे लिए नबी के जीवन में होने वाले व्यवहार परिवर्तन को देखने में मदद करता है। दुनिया में व्याप्त अपमान, विरोध और हिंसा के कारण वे नबी के उत्तरदायित्वों से अपने को दूर करने की सोचते हैं, लेकिन ईश वचन की सजीव शक्ति उसे अपने कार्यों में निष्ठावान बने रहने को मदद करती है। वे नहीं चाहते हुए भी ईश्वर के कार्यों को पूरा करने हेतु आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह उनके अंदर ज्वाला की तरह धधकती है। ईश्वर के जीवित वचन जिसका पान उन्हें कराया गया उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यह हम सबों के संग भी होता है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को नहीं करने की ठान लेते हैं, विशेष करके वे उत्तरदायित्व जो हमारे लिए कठिन लगते हैं। हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर अंदर ही अंदर हमें उन्हें पूरा करने को प्रेरित करते और हम उन्हें पूरा करने को उत्साह में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने जीवन में इसी मनोभाव को समझने में मदद करता है। प्रेरित रोमी समुदाय से अनुरोध करते हैं कि वे इस संसार के अनुकूल नहीं बल्कि सारी चीजों को एक नई दृष्टि से देखें और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं। ऐसा करने के द्वारा वे इस बात को जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहते हैं और उनकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रह्य और सर्वोत्तम है। श्रोताओं, इस संसार के मनोभाव हमें अपने को जीवन की कठिन बातों से दूर रखने को प्रेरित करते हैं या हमें उन बातों और चीजों का आलिंगन करने को अग्रसर करते हैं जो सहज और सरल हैं, जिनके द्वारा हम शान शौकत का अनुभव करते हैं, जो शायद थोड़े ही समय के लिए खुशी लाती है। यह हमें शरीर के व्यसन में संलिप्तता का प्रलोभन लाता है। श्रोताओं, सुसमाचार में हमने मानवीय स्वभाव के बारे में सुना, जो प्रलोभन के रूप में पेत्रुस द्वारा यीशु के समक्ष रखा जाता है और जिसके लिए उन्हें यीशु से कड़ी फटकार सुननी पड़ती है। यीशु पिता के द्वारा अपने को दी गई प्रेरिताई के संबंध में अपने शिष्यों से जिक्र करते हैं। उस प्रेरिताई को पूरा करने में उन्हें किन किन बातों का सामना करना होगा, उसका परिणाम उनके लिए क्या होगा, यह हमारे लिए यीशु के जीवन में आने वाली घटनाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। लेकिन पेत्रुस उन्हें कहते हैं कि ये बातें आप पर कभी नहीं बीतेंगी। यह कहते हुए पेत्रुस यीशु को सहज मार्ग का चुनाव करने को प्रलोभन देते हैं। श्रोताओं, यीशु अपने पीछे आने वालों से कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु की इन बातों को हमने कई बार अपने जीवन में सुना है, जो हमारा ध्यान ख्रिस्तीय होने की चुनौती प्रस्तुत करता है। यह हमें यीशु की प्रेरिताई के बारे में कहती है, जो सहज नहीं है। इसके साथ ही यह हमारी प्रेरिताई के बारे में भी कहती है, जो यीशु का अनुसरण करने की चाह रखते हैं। क्रूस ढोने का अर्थ हमारे लिए अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों, दुखों और तकलीफों को गले लगाना है। क्रूस हमारे लिए भारी है और सदैव भारी रहेगा, लेकिन यही हमारे जीवन की सच्चाई है कि यीशु के संग चलते हुए हम अपने क्रूस को हल्का पाते हैं, क्योंकि हम नहीं बल्कि स्वयं यीशु ख्रिस्त हमारे क्रूस को ढोते और हमारे संग आगे चलते हैं। वे क्रूस ढोने में हमारी मदद करते हैं। वहीं आत्म त्याग करने का अर्थ हमारे लिए चीजों का चुनाव करने से है। क्या हम अपने लिए सहज और हल्की चीजों का चुनाव करते हैं? क्या हम भारी चीजों को दूसरों के लिए छोड़ देते हैं? क्या हम दूसरों की खुशी हेतु अपनी खुशी का त्याग करते हैं? आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमारे लिए अपने बेटे यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें, जिससे हम आत्म त्याग करते हुए अपना क्रूस ढोने के योग्य हो सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन ने आने वाले महीनों के लिए पोप लियो 14वें के धर्म विधि कार्यक्रमों की सूची जारी की है, जिसके अनुसार वे अमोरिस लेतिसिया के वर्षगांठ पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। पोप लियो 14वें बुधवार 14 अक्टूबर को प्रेरितिक प्रबोधन अमोरिस लेतिसिया की 10वीं वर्षगांठ पर पूर्वाह्न 10 बजे संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में पौत्र मिस्सा अर्पित करेंगे। प्रबोधन को परिवार पर धर्म सभा के बाद प्रकाशित किया गया था। अमोरिस लेतिसिया 19 मार्च 2016 को सेंट जोसेफ के पर्व पर पोप फ्रांसिस द्वारा आज की दुनिया में परिवारों के सामने आने वाले चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई परिवार पर 2 साल के सिनेट के बाद प्रकाशित हुए थे। इस साल इसके प्रकाशन के 10 साल बाद पोप लियो ने दुनिया भर के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्षों को रोम में मीटिंग पर बुलाया है, ताकि अमोरिस लेतिसिया की शिक्षाओं की जांच एवं चर्चा की जा सके और आज परिवारों को सुसमाचार कैसे बताया जाए इस पर चर्चा हो सके। आने वाले हफ्तों में संत पापा कई धर्म विधि कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे, जिसमें 7 सितंबर को रोम के निकट एक छोटे गांव जेनाजानो में भली सलाह की माता मरियम के तीर्थ स्थल पर शाम 6 बजे ख्रिस्त्याग अर्पित करना भी शामिल है। इससे पहले संत पापा अपने चुनाव के ठीक 2 दिन बाद 10 मई 2025 को तीर्थस्थल गए थे। उसके बाद 25 से 28 सितंबर को पोप लियो 14वें फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। 4 दिनों की प्रेरितिक यात्रा में वे पेरिस, लूर्द एवं मेट्स में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। अंत में 8 अक्टूबर को वे परमधम पीठे विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत है तो शाम 6 बजे संत पेत्रुस महागिरजा घर में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। भारत के धर्मदक्षों ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना एवं उदार दान की अपील की है। नेपाल चीन बॉर्डर इलाके में आई भयंकर बाढ़ एवं भूस्खलन की प्राकृतिक त्रासदी के बाद भारतीय कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन ने कहा कि भारत की कार्तिक कलीसिया प्रभावित सभी लोगों के साथ दुख एवं एकजुटता के साथ खड़ी है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों लापता है। भारतीय कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन ने एक बयान में कहा, हम संत पिता पोप लियो 14वें के साथ शोक संतप्त परिवारों, घायलों और उन सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस रास्ते में अपने घर एवं जीविका खो दी है। जैसे संत पापा ने पीड़ितों को अपनी आध्यात्मिक सामीप्य का आश्वासन दिया है, वैसे ही हम भी भारत की कलीसिया के रूप में दुख की इस घड़ी में अपने भाइयों और बहनों के करीब हैं। प्रेस कार्यालय द्वारा 28 अगस्त को जारी बयान में भारत में कार्तिक कलीसिया की ओर से CCPI के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने सभी याचकों, लोक धर्मियों, धर्म संघियों, संस्थानों और सद्भावना रखने वाले लोगों से प्रार्थना, करुणा और व्यवहारिक मदद के साथ जैसा बन पड़े इस संकट का जवाब देने का आह्वान किया है।
1: आज शनिवार 29 अगस्त को शाम 6 बजे संत पापा लियो 14वें कास्टिल गंडोल्फो के झील की माता मरियम गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे और जुलूस में भाग लेंगे। संत पापा लियो इतिहास के पहले परमाध्यक्ष होंगे जो नाव से कास्टिल गंडोल्फो में झील की माता मरियम के त्योहार के जुलूस में भाग लेंगे। वे उस झील को पार करेंगे जो 400 सालों से परमाध्यक्षों के गर्मियों के घर का बैकग्राउंड रहा है। पवित्र मिसा समारोह के अंत में संत पापा और विश्वासी गण छोटे गिरजाघर से निकलेंगे और झील की माता मरियम की प्रतिमा को जुलूस में सड़क के किनारे ट्रापिकाना जगह तक ले जाएंगे। माता मरियम की प्रतिमा को एक नाव में लादा जाएगा। संत पापा भी नाव पर चढ़ेंगे और नाव पास के जॉर्जियो बीच की जगह पर जाएगी। संत पापा और झील की माता मरियम की प्रतिमा के साथ स्थानीय परंपरा के अनुसार 1 दर्जन नावें होंगी और बुधवार 26 अगस्त को नेपाल में बाढ़ से तिब्बत के करीब विशाल क्षेत्र को प्रभावित करने वाली घटना के लिए अपना दुख एक टेलीग्राम में व्यक्त करने के बाद संत पापा लियो 14वें ने आपदा प्रभावित आबादी की सबसे जरूरी आवश्यकताओं के लिए नेपाल के प्रेरितिक राजदूतावास के साथ सहमति व्यक्त करते हुए वित्तीय सहायता भेजा। इस योगदान से नेपाल कारितास को मदद मिलेगी जो प्रेरितिक विकारियट के निर्देशन में काम करती है। उदार सेवा के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष लुइस ने कहा कि यह पहली मदद है जिसे संत पापा दूसरे मौकों की तरह लोगों की शुरुआती मदद के लिए भेजना चाहते थे। यह संत पापा के नजदीकी और कोमलता पहुंचाने का शीघ्र और ठोस संकेत है, खासकर सबसे कमजोर लोगों तक। ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रभावित इलाकों में 630 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 3000 लोग लापता हैं, जिनमें 500 से ज्यादा विदेशी शामिल हैं। और संत पापा लियो 14वें ने नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम की मृत्यु पर राजा हाकोन अष्टम और नॉर्वे के लोगों को अपनी संवेदनाएं भेजा। राजा हेराल्ड पंचम की शुक्रवार सुबह 6:35 पर ओस्लो विश्वविद्यालय अस्पताल में मृत्यु हो गई। उन्हें पिछले हफ्ते गंभीर रक्त विकार के इलाज के लिए राष्ट्रीय अस्पताल ले जाया गया था। राजा की मृत्यु के कुछ घंटों बाद संत पापा लियो ने राजा हाकोन अष्टम को उनके पिता की मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए एक टेलीग्राम भेजा। संदेश में उन्होंने लिखा कि राजा हेराल्ड की मृत्यु की खबर सुनकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने नए राजा, शाही परिवार के सदस्यों और नॉर्वे के सभी लोगों के प्रति दिल से संवेदनाएं भेजा। देश के लिए उनकी कई सालों की समर्पित सेवा को ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि इसका फल मिलता रहेगा। मैं दिवंगत राजा की आत्मा की शांति के लिए अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा देता हूँ। अंत में संत पापा ने ईश्वर से सांत्वना और शांति का आशीर्वाद मांगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार की आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव के रूप में हमें शारीरिक दुख, पीड़ा और कष्ट से भय लगता है। यही कारण है कि हमारे जीवन की प्रार्थना में हम एक विशेष निवेदन यह करते हैं कि ईश्वर हमें विभिन्न तरह की दुर्घटनाओं, विपत्तियों और हानिकारक चीजों से बचाए रखें। हम में से ऐसा कोई भी नहीं जो अपने जीवन में विपत्तियों और मुसीबतों की चाह रखता हो। वर्ष के 22वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठ हमारे लिए दुखों की चर्चा करते हैं। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से अपने ऊपर आने वाले घोर दुख की चर्चा करते हैं। वे ऐसा अपने शिष्यों से एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार करते हैं कि किस तरह उन्हें नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ेगा। एक सच्चे मानव के रूप में यह हमारे लिए यीशु के हृदय में व्याप्त एक भय को व्यक्त करता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने लिए ईश्वर से कृपा की याचना करें कि वे हमें अपने जीवन के दुखों में अपनी योजना को देखने, उन्हें स्वीकारने और उनमें अपनी उपस्थिति को देखने हेतु मदद करें। हम अपने जीवन के छोटे बड़े दुखों को यीशु के दुख भोग की याद करते हुए अपने दैनिक जीवन में साहसपूर्वक वहन कर सकें। हम जीवन में अपने दुखों के कारण हताश व निराश ना हो बल्कि अपने को उस जीवनदायी ईश्वर के विश्वास में अडिग बनाए रखें जहां से हमारे लिए जीवन की सारी चीजें सांत्वना, खुशी और प्रेम स्वरूप आती हैं।
1: यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए समझाने लगा, ईश्वर ऐसा न करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक को अपने कर्म का फल देगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे जीवन की दुख भरी परिस्थितियों में सांत्वना का कारण बने जिससे हम उन चुनौती भरी स्थितियों में भी अपने को ईश्वर के संग संयुक्त रख सकें। श्रोताओं, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए दुख के कारण नबी में व्याप्त एक द्विधा भरी स्थिति को व्यक्त करता है जिसके कारण वे ईश्वर के वचनों को घोषित करना नहीं चाहते और ना ही भविष्यवाणी करने की सोचते हैं। लेकिन ईश वचन नबी के अंतरतम में एक धधकती आग बन उसके हड्डी हड्डी में समा जाती है। वह उसे अपने में दबा नहीं रख सकते बल्कि वे वचनों से प्रेरित अपने कार्यों को पूरा करने हेतु आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, यह हमारे लिए नबी के जीवन में होने वाले व्यवहार परिवर्तन को देखने में मदद करता है। दुनिया में व्याप्त अपमान, विरोध और हिंसा के कारण वे नबी के उत्तरदायित्वों से अपने को दूर करने की सोचते हैं, लेकिन ईश वचन की सजीव शक्ति उसे अपने कार्यों में निष्ठावान बने रहने को मदद करती है। वे नहीं चाहते हुए भी ईश्वर के कार्यों को पूरा करने हेतु आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह उनके अंदर ज्वाला की तरह धधकती है। ईश्वर के जीवित वचन जिसका पान उन्हें कराया गया उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यह हम सबों के संग भी होता है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को नहीं करने की ठान लेते हैं, विशेष करके वे उत्तरदायित्व जो हमारे लिए कठिन लगते हैं। हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर अंदर ही अंदर हमें उन्हें पूरा करने को प्रेरित करते और हम उन्हें पूरा करने को उत्साह में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने जीवन में इसी मनोभाव को समझने में मदद करता है। प्रेरित रोमी समुदाय से अनुरोध करते हैं कि वे इस संसार के अनुकूल नहीं बल्कि सारी चीजों को एक नई दृष्टि से देखें और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं। ऐसा करने के द्वारा वे इस बात को जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहते हैं और उनकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रह्य और सर्वोत्तम है। श्रोताओं, इस संसार के मनोभाव हमें अपने को जीवन की कठिन बातों से दूर रखने को प्रेरित करते हैं या हमें उन बातों और चीजों का आलिंगन करने को अग्रसर करते हैं जो सहज और सरल हैं, जिनके द्वारा हम शान शौकत का अनुभव करते हैं, जो शायद थोड़े ही समय के लिए खुशी लाती है, या हमें शरीर के व्यसन में संलिप्तता का प्रलोभन लाता है। श्रोताओं, सुसमाचार में हमने मानवीय स्वभाव के बारे में सुना, जो प्रलोभन के रूप में पेत्रुस द्वारा यीशु के समक्ष रखा जाता है और जिसके लिए उन्हें यीशु से कड़ी फटकार सुननी पड़ती है। यीशु पिता के द्वारा अपने को दी गई प्रेरिताई के संबंध में अपने शिष्यों से जिक्र करते हैं। उस प्रेरिताई को पूरा करने में उन्हें किन किन बातों का सामना करना होगा, उसका परिणाम उनके लिए क्या होगा, या हमारे लिए यीशु के जीवन में आने वाली घटनाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। लेकिन पेत्रुस उन्हें कहते हैं कि ये बातें आप पर कभी नहीं बीतेंगी। यह कहते हुए पेत्रुस यीशु को सहज मार्ग का चुनाव करने को प्रलोभन देते हैं। श्रोताओं, यीशु अपने पीछे आने वालों से कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु की इन बातों को हमने कई बार अपने जीवन में सुना है, जो हमारा ध्यान ख्रिस्तीय होने की चुनौती प्रस्तुत करता है। यह हमें यीशु की प्रेरिताई के बारे में कहती है, जो सहज नहीं है। इसके साथ ही यह हमारी प्रेरिताई के बारे में भी कहती है, जो यीशु का अनुसरण करने की चाह रखते हैं। क्रूस ढोने का अर्थ हमारे लिए अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों, दुखों और तकलीफों को गले लगाना है। क्रूस हमारे लिए भारी है और सदैव भारी रहेगा, लेकिन यही हमारे जीवन की सच्चाई है कि यीशु के संग चलते हुए हम अपने क्रूस को हल्का पाते हैं, क्योंकि हम नहीं बल्कि स्वयं यीशु ख्रिस्त हमारे क्रूस को ढोते और हमारे संग आगे चलते हैं। वे क्रूस ढोने में हमारी मदद करते हैं। वही आत्म त्याग करने का अर्थ हमारे लिए चीजों का चुनाव करने से है। क्या हम अपने लिए सहज और हल्की चीजों का चुनाव करते हैं? क्या हम भारी चीजों को दूसरों के लिए छोड़ देते हैं? क्या हम दूसरों की खुशी हेतु अपनी खुशी का त्याग करते हैं? आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमारे लिए अपने बेटे यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें, जिससे हम आत्म त्याग करते हुए अपना क्रूस ढोने के योग्य हो सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन ने आने वाले महीनों के लिए पोप लियो 14वें के धर्म विधि कार्यक्रमों की सूची जारी की है, जिसके अनुसार वे अमोरिस लेतीत्सा के वर्षगांठ पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में क्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। पोप लियो 14वें बुधवार 14 अक्टूबर को प्रेरित प्रबोधन अमोरिस लेतीत्सा की 10वीं वर्षगांठ पर पूर्वाहन 10 बजे संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में पौत्र मिस्सा अर्पित करेंगे। प्रबोधन को परिवार पर धर्म सभा के बाद प्रकाशित किया गया था। अमोरिस लेतीत्सा 19 मार्च 2016 को सेंट जोसेफ के पर्व पर पोप फ्रांसिस द्वारा आज की दुनिया में परिवारों के सामने आने वाले चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई परिवार पर 2 साल के सिनेट के बाद प्रकाशित हुए थे। इस साल इसके प्रकाशन के 10 साल बाद पोप लियो ने दुनिया भर के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्षों को रोम में मीटिंग पर बुलाया है, ताकि अमोरिस लेतीत्सा की शिक्षाओं की जांच एवं चर्चा की जा सके और आज परिवारों को सुसमाचार कैसे बताया जाए इस पर चर्चा हो सके। आने वाले हफ्तों में संत पापा कई धर्मविधि कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे, जिसमें 7 सितंबर को रोम के निकट एक छोटे गांव जेनाजानो में भली सलाह की माता मरियम के तीर्थ स्थल पर शाम 6 बजे क्रिस्त्याग अर्पित करना भी शामिल है। इससे पहले संत पापा अपने चुनाव के ठीक 2 दिन बाद 10 मई 2025 को तीर्थस्थल गए थे। उसके बाद 25 से 28 सितंबर को पोप लियो 14वें फ्रांस की प्रेरित यात्रा करेंगे। 4 दिनों की प्रेरित यात्रा में वे पेरिस, लूर्द एवं मेड्स में क्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। अंत में 8 अक्टूबर को वे परमधम पीठ विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत है तो शाम 6 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर में क्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। भारत के धर्माध्यक्षों ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना एवं उदार दान की अपील की है। नेपाल चीन बॉर्डर इलाके में आई भयंकर बाढ़ एवं भूस्खलन की प्राकृतिक त्रासदी के बाद भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने कहा कि भारत की कार्तिक कलीसिया प्रभावित सभी लोगों के साथ दुख एवं एकजुटता के साथ खड़ी है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों लापता है। भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने एक बयान में कहा, हम संत पिता पोप लियो 14वें के साथ शोक संतप्त परिवारों, घायलों और उन सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस रास्ते में अपने घर एवं जीविका खो दी है। जैसे संत पापा ने पीड़ितों को अपनी आध्यात्मिक सामीप्य का आश्वासन दिया है, वैसे ही हम भी भारत की कलीसिया के रूप में दुख की इस घड़ी में अपने भाइयों और बहनों के करीब हैं। प्रेस कार्यालय द्वारा 28 अगस्त को जारी बयान में भारत में कार्तिक कलीसिया की ओर से CCBI के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने सभी याचकों, लोक धर्मियों, धर्म संघियों, संस्थानों और सद्भावना रखने वाले लोगों से प्रार्थना, करुणा और व्यवहारिक मदद के साथ जैसा बन पड़े इस संकट का जवाब देने का आह्वान किया है।
1: आज शनिवार 29 अगस्त को शाम 6 बजे संत पापा लियो 14वें कास्टल गंडोल्फो के झील की माता मरियम गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे और जुलूस में भाग लेंगे। संत पापा लियो इतिहास के पहले परमाध्यक्ष होंगे जो नाव से कास्टल गंडोल्फो में झील की माता मरियम के त्योहार के जुलूस में भाग लेंगे। वे उस झील को पार करेंगे जो 400 सालों से परमाध्यक्षों के गर्मियों के घर का बैकग्राउंड रहा है। पवित्र मिसा समारोह के अंत में संत पापा और विश्वासी गण छोटे गिरजाघर से निकलेंगे और झील की माता मरियम की प्रतिमा को जुलूस में सड़क के किनारे त्रापिकाना जगह तक ले जाएंगे। माता मरियम की प्रतिमा को एक नाव में लादा जाएगा। संत पापा भी नाव पर चढ़ेंगे और नाव पास के जॉर्जियो बीच की जगह पर जाएगी। संत पापा और झील की माता मरियम की प्रतिमा के साथ स्थानीय परंपरा के अनुसार 1 दर्जन नावें होंगी और बुधवार 26 अगस्त को नेपाल में बाढ़ से तिब्बत के करीब विशाल क्षेत्र को प्रभावित करने वाली घटना के लिए अपना दुख एक टेलीग्राम में व्यक्त करने के बाद संत पापा लियो 14वें ने आपदा प्रभावित आबादी की सबसे जरूरी आवश्यकताओं के लिए नेपाल के प्रेरितिक राजदूतावास के साथ सहमति व्यक्त करते हुए वित्तीय सहायता भेजा। इस योगदान से नेपाल कारितास को मदद मिलेगी जो प्रेरितिक विकारियट के निर्देशन में काम करती है। उदार सेवा के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष लुइस ने कहा कि यह पहली मदद है जिसे संत पापा दूसरे मौकों की तरह लोगों की शुरुआती मदद के लिए भेजना चाहते थे। यह संत पापा के नजदीकी और कोमलता पहुंचाने का शीघ्र और ठोस संकेत है, खासकर सबसे कमजोर लोगों तक। ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रभावित इलाकों में 630 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 3000 लोग लापता हैं, जिनमें 500 से ज्यादा विदेशी शामिल हैं। और संत पापा लियो 14वें ने नार्वे के राजा हेराल्ड पंचम की मृत्यु पर राजा हाकोन अष्टम और नार्वे के लोगों को अपनी संवेदनाएं भेजा। राजा हेराल्ड पंचम की शुक्रवार सुबह 6:35 पर ओस्लो विश्वविद्यालय अस्पताल में मृत्यु हो गई। उन्हें पिछले हफ्ते गंभीर रक्त विकार के इलाज के लिए राष्ट्रीय अस्पताल ले जाया गया था। राजा की मृत्यु के कुछ घंटों बाद संत पापा लियो ने राजा हाकोन अष्टम को उनके पिता की मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए एक टेलीग्राम भेजा। संदेश में उन्होंने लिखा कि राजा हेराल्ड की मृत्यु की खबर सुनकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने नए राजा, शाही परिवार के सदस्यों और नार्वे के सभी लोगों के प्रति दिल से संवेदनाएं भेजा। देश के लिए उनकी कई सालों की समर्पित सेवा को ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि इसका फल मिलता रहेगा। मैं दिवंगत राजा की आत्मा की शांति के लिए अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा देता हूँ। अंत में संत पापा ने ईश्वर से सांत्वना और शांति का आशीर्वाद मांगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
0: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है।
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में।

0: कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: हे
1: के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: लाउडेटुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कलीसिया में महिला धर्म संघों के सुसमाचार प्रचार के नए तरीके पर चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय था जब संचार माध्यमों एवं नई तकनीकी उपकरणों का प्रयोग दुनियादारी समझी जाती थी और धर्म संघी उनसे दूरी रखने का प्रयास करते थे, लेकिन नई तकनीकियों के तेजी से विकास के साथ अब मनोभाव बदलने लगा है। अब उनसे दूर रहने के बजाय धर्म संघी भी उनका प्रयोग सुसमाचार प्रचार में करने लगे हैं। इससे फायदा यह हो रहा है कि उन लोगों तक भी ख्रिस्त की ज्योति फैलाई जा सकती है जो कलीसिया से दूर हैं। तंजानिया में उसंबरा की माता मरियम की धर्म बहने उन धर्म संघियों में से एक हैं जो सुसमाचार प्रचार के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। टेलीविजन और सोशल नेटवर्क के जरिए धर्म बहने सुसमाचार साझा करती, युवाओं को जोड़ती और कार्तिक विश्वास के बारे सवालों का जवाब देती हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है उसंबरा की माता मरियम की धर्म बहनों के नए मिशन पर एक चर्चा, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्के। उसंबरा की माता मरियम की धर्म बहनों के धर्म संघ की स्थापना रोज मिलियन फादर्स के मॉन्सिनियर यूजेन आर्थर ने 1954 में की थी। यह एक धर्म प्रांतीय धर्म संघ है जिसकी मुख्य प्रेरिताई है सुसमाचार प्रचार एवं शिक्षा देना। 1958 में मॉन्सिनियर आर्थर तांगा कार्तिक धर्म प्रांत के पहले बिशप बने। धर्म बहनों का प्रशिक्षण शुरू में मूल्यवान रक्त की मिशनरी धर्म बहनों के द्वारा किया जाता था और उनकी पहली सुपीरियर जनरल सिस्टर विलिंडा गिसबर्स थी। धर्म संघ ने अपना मिशन रंगवी में शुरू किया। समय के साथ धर्म बहनों ने किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज तक सभी स्तर पर शिक्षा के साथ साथ धर्म शिक्षा एवं युवाओं को तैयार करने पर ध्यान दिया। बदलते समय के हिसाब से धर्म बहनों ने संचार के आधुनिक उपकरणों से लोगों तक पहुंचने की जरूरत को समझा। इसी कारण से जुलाई 2024 में तांगा इलाके के लुशुटो उसंबरा माउंटेन टीवी या UMTV शुरू हुआ। इस पहल का मुख्य मकसद ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करना है जो सुसमाचार प्रचार, शिक्षा एवं विश्वास के मुद्दों पर बातचीत का समर्थन करें। UMTV की डायरेक्टर सिस्टर पॉलिना टी मशाना ने कहा, टेलीविजन और इंटरनेट के जरिए हम अपने आसपास के समुदायों से कहीं आगे के लोगों तक पहुंच पाते हैं। इसे सुसमाचार प्रचार करने और लोगों, खासकर युवाओं को ईश्वर को और अधिक जानने एवं उनसे प्यार करने के लिए बढ़ावा देने के हमारे मिशन को मजबूती मिलती है। बहुत से युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और YouTube के जरिए UMTV को फॉलो करते हैं, जहां चैनल युवाओं, विश्वास एवं सामाजिक मुद्दों पर फोकस करने वाले प्रोग्राम दिखाता है। वहीं डॉन बोस्को की आध्यात्मिकता से प्रेरित पहल भी शामिल है। UMTV कई तरह से कार्यक्रम प्रसारित करता है जिसमें धर्म शिक्षा, विश्वास पर चिंतन और युवाओं एवं समाज पर चर्चा शामिल है। इन प्रयासों के द्वारा धर्म बहने अपनी कैरिज्म एवं मिशन को ऐसे मीडिया माहौल में ज्यादा दिखाने की कोशिश करती हैं जो दैनिक जीवन को तेजी से बदल रहा है। लॉन्च होने के बाद से यह प्लेटफॉर्म स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर ऑनलाइन, युवाओं के बीच बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका है। यह बढ़ता जुड़ाव ऐसी सामग्री की चाहत को दिखाता है जिसमें शिक्षा, चिंतन एवं पहुंच योग्य संचार शामिल हों। सिस्टर पॉलिना कहती हैं कि मीडिया में काम करने से धर्म संघ उन समुदायों तक पहुंच पाता है जहां वे शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा, मुझे इस काम में शामिल होकर खुशी हो रही है, भले ही बहुत से लोग अब भी सोचते हैं कि कैमरा चलाना मर्दों का काम है। धर्म बहनें भी यह भूमिका निभा सकती हैं और बड़े समुदाय तक सुसमाचार पहुंचा सकती हैं। इसमें कलीसिया के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर काम करने से भी फायदा हुआ है। UMTV के सहयोगियों में से एक ब्रदर लुकास मसासी OFM कैप ने विश्वास पर आधारित सामग्री को बढ़ावा देने और अलग अलग स्तर पर सीखने में मदद करने में इस परियोजना की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने एक सिंपल YouTube चैनल से लेकर एक टेलीविजन प्लेटफॉर्म तक इसके विकास पर ध्यान दिया।
अपने कार्यक्रमों के द्वारा UMT भी स्थानीय समुदाय में शिक्षा में योगदान दे रहा है और संस्कृति, संगीत, आध्यात्मिकता और बुनियादी जीवन शैली जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जिससे घर बैठे भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे नए प्रयासों की तरह UMTV को भी व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित संसाधन और पैसे की कमी की वजह से दैनिक प्रोडक्शन मुश्किल हो जाता है, जबकि भरोसेमंद इंटरनेट तक पहुंच और डिजिटल डिवाइस की कीमत कई दशकों के लिए रुकावटें बनी हुई हैं। बिजली चले जाने से भी प्रसारण के नियमित होने पर असर पड़ता है। इसके अलावा धम्मसंघ के सभी सदस्य सुसमाचार प्रचार के लिए मीडिया की अहमियत को नहीं पहचान पाते, जिसके लिए समुदाय में लगातार जानकारी और जागरूकता की जरूरत होती है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद धम्म बहने मीडिया को प्रचार एवं ट्रेनिंग के लिए एक प्रमुख जगह के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका लक्ष्य ज्यादा लोगों तक पहुंचना और युवाओं को अर्थ एवं विश्वास की तलाश में डिजिटल उपकरण के साथ ज्यादा जागरूक होकर जुड़ने में मदद करना है। सुसमाचार के शब्दों से प्रेरित होकर, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। धम्म बहने टेलीविजन, सोशल मीडिया एवं शैक्षणिक सामग्री के द्वारा मसीह को बताने का अपना मिशन जारी रख रहे हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत उसम्बरा की माता मरियम की धम्म बहनों का मीडिया के माध्यम से सुसमाचार प्रचार के कार्य पर चर्चा सुन रहे थे, जिसको सिस्टर एर्नेस्टिना पैट्रिक लास्वे SAC और सिस्टर क्रिस्टीना मसीवो CPS ने लिखा है। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका बेटी का सुख। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, विवाह के पश्चात हर लड़की के माता पिता की यही इच्छा रहती है कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे और उसे उसके ससुराल में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उसके घर में सुख शांति बनी रहे और उसके ससुराल के सभी सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बने और उसे दाम्पत्य जीवन का सुख मिले। बेटी के माता पिता को ससुराल के छोटे मोटे विवाद को खुद सुलझाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि बेटी जब मायका आती है तो माता जी एक एक करके ससुराल के सब सदस्यों के बारे में पूछना शुरू कर देती है और हर एक का कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही लेती हैं। ससुराल में सास ससुर जेठ ननद देवर के साथ मिलकर रहने की बजाय अपनी अलग घर गृहस्थी शुरू करने के लिए दबाव डालती है। अगर शुरू में ही उनकी दखल अंदाजी को रोका ना गया तो ऐसी माताएं जाने अनजाने अपनी बेटी के अच्छे भले घर के सुख चैन को बर्बाद कर देती हैं। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में ऐसी माताओं का मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका बेटी का सुख।
1: हाँ शीतल बेटी, आ यहाँ बैठ। अरे सुबह की आई है बेटी तू, अब फुर्सत मिली है तेरे साथ बैठने और बातें करने के लिए। और सुना, तेरे वहाँ ससुराल में सब कैसे हैं?
2: सभी अच्छे से हैं माँ।
1: और दामाद के क्या हाल हैं? ठीक ठाक तो हैं?
2: वो भी ठीक है माँ, उनका काम भी अच्छा चल रहा है। अभी प्रमोशन के लिए उनका ही नाम आया है, शायद अगले महीने तक उनका प्रमोशन भी हो जाएगा।
1: चल अच्छा है बेटी। और तेरे देवर का क्या हाल है? कहीं काम धंधे से लगा या अभी भी बड़ी बड़ी बातें करता हुआ घूम फिर कर टाइम पास कर रहा है?
2: नरेन भाई का तो अभी भी वही चल रहा है माँ, न घर की दुकान देखते हैं और ना ही कहीं और कोई काम धंधा चल रहा है उनका।
1: देख बेटी, सच बताऊं तो नरेंद्र को बिगाड़ने वाली उसकी माँ ही है, मतलब तेरी सास। उसी ने सिर चढ़ा रखा है नरेंद्र को, ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है, और ना ही उसे दुकान पर बैठने के लिए कहती है।
2: अरे माँ, अगर नरेंद्र भाई दुकान पर भी बैठे ना तो समझो दुकान का तो तिया पाचा ही कर देते हैं वो।
1: तिया पाचा कर देता है वो? कैसे? अब जरा मैं भी तो सुनूं।
2: अरे माँ, दुकान के गल्ले से पैसे उड़ाते तो उड़ाते हैं, अपने मिलने जुलने वाले को खूब उधार भी दे देते हैं। बाबूजी भी परेशान हो गए उनसे, इसलिए जेठ जी और बाबूजी भी दुकान पे बैठते हैं अब।
1: ओहो, तो अब तेरा देवर घर में ही हाथ की सफाई भी बताने लगा है। बढ़िया बढ़िया खबर सुनाई है तूने। घमंडी लोगों के घर को उनका भेदी ही ढाता है। और वो तेरे जेठ जेठानी के क्या हाल है? तेरे जाने से तेरी जेठानी के तो मजे हो गए होंगे।
2: नहीं माँ, जेठानी जी भी बहुत अच्छी हैं, अक्सर ही घर के कामों में मेरा हाथ बटाती रहती हैं। माँ जी तो उनको बहुत मना करती हैं कि बहू तू तब तक दूसरे काम देख ले, मगर वो
1: हाँ, मतलब तेरी सास चाहती है कि तू अकेले ही सारा काम किया करे, तुझे दम मारने की भी फुर्सत ना मिले, क्यों?
2: हाँ माँ, अब माँ जी के कहने से तो लगता ही यही है।
1: अरे क्या बात करती है तू, लगता क्या है, बात ही यही है। वरना तेरी सास को क्या पड़ी है तुम लोगों के काम में दखल देने की? उसे तो घर का काम चाहिए ना, वो होता तो है, वो बैठी रहे पटरानी की तरह, उसका काम तो हो रहा है ना।
2: हाँ ये बात तो है माँ, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं वो झट से आकर जेठानी से यही कहती है, बड़ी बहू ये रहने दे, ये कर लेगी, तू दूसरा काम कर ले, दूसरा देख ले।
1: वही तो मैं कह रही हूँ, जरा सोच वो ऐसा क्यों करती है। उसने भी बड़े बेटे और बहू को सिर चढ़ा रखा है, क्योंकि बड़ा बेटा ही तो बाप के साथ घर की दुकान में हाथ बटाता है और सब कुछ माँ के हाथ पर रखता है, तो ऐसे में बड़े बेटे बहू का ख्याल तो रखेगी ही ना वो।
2: हाँ माँ।
1: और तेरा पति मतलब दामाद अपनी नौकरी करता, अपना खाता कमाता है, वो तो तेरी सास को अखरता होगा।
2: ये बात तो होगी।
1: और तेरा जेठ, वो तेरे साथ कैसे रहता है?
2: वो तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। कोई काम की बात हो तो ही बोलते हैं वो, वरना तो चुप ही रहते हैं।
1: क्यों शीतल, ये भी तो हो सकता है कि वो तुझसे बात ही नहीं करना चाहता हो, वो और उसकी औरत।
3: हाँ दीदी, कैसी हो तुम? अब सुनाओ।
2: पायल आ बैठ, मैं तो अच्छी हूँ, तू सुना, तू कैसी है और तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है?
3: मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और मैं भी अच्छी हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में कैसी बीत रही है?
2: हाँ अच्छी बीत रही है यार।
1: अरे काहे की अच्छी बीत रही है, मुझे क्या पता नहीं है, और चाहे तो तू खुद शीतल के मुंह से सुन ले।
3: ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं बहुत देर से पड़ोस के कमरे से यहाँ आंगन में होने वाली आप दोनों की बातें सुन रही थी। माँ, क्यों आप अपनी ही बेटी के सुखद जीवन में आग लगाने पर तुली हुई हो? क्यों अपनी बेटी को ससुराल में चैन से जीने नहीं देना चाहती हो?
1: अरे पहले तू खुद ही शीतल से पूछ ले कि वो ससुराल में किस तरह से रहती है। मैं तो कहती हूँ बेटी, अगर तुम्हें सचमुच में सुखी रहना है तो दामाद के साथ अलग रहने लग, तभी तू सुखी रहेगी।
3: माँ, कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आप अपनी ही बेटी को गलत सलाह दे रही हैं। मैं कब से सुन रही हूँ, दीदी अपने ससुराल वालों की तारीफ भी करती है तो आप जबरदस्ती उनके किसी न किसी व्यवहार में कोई न कोई कमी बताकर उसे दोषी सिद्ध करने पर तुली हुई दिखाई देती हैं।
1: अब मैं अपने मन से तो कुछ नहीं कह रही हूँ, जो शीतल से सुन रही हूँ उसी आधार पर तो कुछ कह रही हूँ ना।
3: शीतल दीदी जो भी कह रही हैं, आप उसको अपने गंदे विचार से दबाव डालकर अपने नजरिए से वही दिखा और बता रही हैं जो आप देख रही हैं और जो आप चाहती हैं।
2: पायल रहने दे, शायद माँ ठीक कहती हैं।
3: क्या ठीक कह रही हैं दीदी, मैं जब से सुन रही हूँ माँ कभी तुम्हारी सास की बुराई करती है, कभी तुम्हारे देवर की बुराई करती है, तो कभी जेठ जेठानी की। वो तो मैं आ गई, वरना इन्होंने तो तुम्हारे संत जैसे ससुर को भी नहीं छोड़ना था। ये उनकी उनकी भी बुराई करने में कोई कोताही नहीं बरतती।
1: देख पायल, अब मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी बेटी के ससुराल वालों के विरुद्ध अपनी ही बेटी के कान भरूंगी।
4: मैं भी बहुत देर से तुम्हारी बुराई पुराण सुन रहा था सावित्री। शाबाश पायल बेटी, तुमने अपनी माँ को उसकी गलती बताई। मेरे तो समझ में नहीं आता सावित्री कि तुम अपनी ही बेटी के कान भरकर उसके सुखद भविष्य में क्यों खलल पैदा कर रही हो।
1: अरे मैं तो बस
4: तुम्हारे जैसी माएँ ही अपनी बेटियों के ससुराल और परिवार में दखल देती हैं और उनके अच्छे भले चलते शांत जीवन के पानी में बुराई का कंकर फेंक कर हलचल पैदा कर देती हैं, और जब प्रतिक्रिया स्वरूप बेटी के ससुराल से कोई कुछ कहता है तो तुम जैसी माएँ ही फिर कहती हैं कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, तेरे ससुराल वाले ऐसे ही हैं।
2: पापा माँ तो ऐसे ही कह रही थी, आप भी ना।
4: इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे नहीं कही जाती बेटी। माँ अगर सचमुच में अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हैं तो उन्हें अपनी बेटियों को अपने ससुराल में तनकर रहने की शिक्षा देने और कहीं अलग गृहस्थी बसाने की सलाह देने के बजाय ससुराल में ही सबसे मिलकर रहने और हमेशा वहीं संयुक्त परिवार में ही रहने की शिक्षा देनी चाहिए।
1: मैं आपकी बात समझ गई। दरअसल मैं अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी ना कि अपनी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचने की तमीज़ भी खो बैठी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए।
4: इसमें माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है, और अगर माफ़ी मांगनी ही है तो अपनी बेटी से माफ़ी मांगो। उसे शिक्षा देनी ही है तो सास ससुर जेठ जेठानी का आदर करने की शिक्षा दो, देवर ननन देवरानी को प्यार से साथ में रखने की सीख दो।
3: यही तो मैं भी चाहती हूँ पापा।
1: ठीक है, अब मैं भी वही करूँगी जो तुम सब चाहते हो। मैं तो सचमुच तुझे सुखी देखना चाहती हूँ शीतल बेटी।
2: हाँ माँ।
0: बेटी का सुख। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अपर्णा सिंह, अंतरा करवड़े, आस्था उपमन्यु और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोता और रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कलीसिया में महिला धर्म संघों के सुसमाचार प्रचार के नए तरीके पर चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय था जब संचार माध्यमों एवं नई तकनीकी उपकरणों का प्रयोग दुनियादारी समझी जाती थी और धर्म संघी उनसे दूरी रखने का प्रयास करते थे, लेकिन नई तकनीकियों के तेजी से विकास के साथ अब मनोभाव बदलने लगा है। अब उनसे दूर रहने के बजाय धर्म संघी भी उनका प्रयोग सुसमाचार प्रचार में करने लगे हैं। इससे फायदा यह हो रहा है कि उन लोगों तक भी ख्रिस्त की ज्योति फैलाई जा सकती है जो कलीसिया से दूर हैं। तंजानिया में उसंबरा की माता मरियम की धर्म बहनें उन धर्म संघियों में से एक हैं जो सुसमाचार प्रचार के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। टेलीविजन और सोशल नेटवर्क के जरिए धर्म बहनें सुसमाचार साझा करती, युवाओं को जोड़ती और कार्तिक विश्वास के बारे सवालों का जवाब देती हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है उसंबरा की माता मरियम की धर्म बहनों के नए मिशन पर एक चर्चा, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्के। उसंबरा की माता मरियम की धर्म बहनों के धर्म संघ की स्थापना रोज मिलियन फादर्स के मॉन्सिनियर यूजेन आर्थर ने 1954 में की थी। यह एक धर्म प्रांत धर्म संघ है जिसकी मुख्य प्रेरिताएं हैं सुसमाचार प्रचार एवं शिक्षा देना। 1958 में मॉन्सिनियर आर्थर तांगा कार्तिक धर्म प्रांत के पहले बिशप बने। धर्म बहनों का प्रशिक्षण शुरू में मूल्यवान रक्त की मिशनरी धर्म बहनों के द्वारा किया जाता था और उनकी पहली सुपीरियर जनरल सिस्टर विलिंडा गिसबर्स थी। धर्म संघ ने अपना मिशन रंगवी में शुरू किया। समय के साथ धर्म बहनों ने किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज तक सभी स्तर पर शिक्षा के साथ साथ धर्म शिक्षा एवं युवाओं को तैयार करने पर ध्यान दिया। बदलते समय के हिसाब से धर्म बहनों ने संचार के आधुनिक उपकरणों से लोगों तक पहुंचने की जरूरत को समझा। इसी कारण से जुलाई 2024 में तांगा इलाके के लुशुटो उसंबरा माउंटेन टीवी या UMTV शुरू हुआ। इस पहल का मुख्य मकसद ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करना है जो सुसमाचार प्रचार, शिक्षा एवं विश्वास के मुद्दों पर बातचीत का समर्थन करें। UMTV की डायरेक्टर सिस्टर पॉलिना टी मशाना ने कहा, टेलीविजन और इंटरनेट के जरिए हम अपने आसपास के समुदायों से कहीं आगे के लोगों तक पहुंच पाते हैं। इसे सुसमाचार प्रचार करने और लोगों, खासकर युवाओं को ईश्वर को और अधिक जानने एवं उनसे प्यार करने के लिए बढ़ावा देने के हमारे मिशन को मजबूती मिलती है। बहुत से युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और YouTube के जरिए UMTV को फॉलो करते हैं, जहां चैनल युवाओं, विश्वास एवं सामाजिक मुद्दों पर फोकस करने वाले प्रोग्राम दिखाता है। वहीं डॉन बोस्को की आध्यात्मिकता से प्रेरित पहल भी शामिल है। UMTV कई तरह से कार्यक्रम प्रसारित करता है जिसमें धर्म शिक्षा, विश्वास पर चिंतन और युवाओं एवं समाज पर चर्चा शामिल है। इन प्रयासों के द्वारा धर्म बहनें अपनी कैरिज्म एवं मिशन को ऐसे मीडिया माहौल में ज्यादा दिखाने की कोशिश करती हैं जो दैनिक जीवन को तेजी से बदल रहा है। लॉन्च होने के बाद से यह प्लेटफॉर्म स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर ऑनलाइन, युवाओं के बीच बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका है। यह बढ़ता जुड़ाव ऐसी सामग्री की चाहत को दिखाता है जिसमें शिक्षा, चिंतन एवं पहुंच योग्य संचार शामिल हों। सिस्टर पॉलिना कहती हैं कि मीडिया में काम करने से धर्म संघ उन समुदायों तक पहुंच पाता है जहां वे शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा, मुझे इस काम में शामिल होकर खुशी हो रही है, भले ही बहुत से लोग अब भी सोचते हैं कि कैमरा चलाना मर्दों का काम है। धर्म बहनें भी यह भूमिका निभा सकती हैं और बड़े समुदाय तक सुसमाचार पहुंचा सकती हैं। इसमें कलीसिया के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर काम करने से भी फायदा हुआ है। UMTV के सहयोगियों में से एक ब्रदर लुकास मसासी ओ FM कैप ने विश्वास पर आधारित सामग्री को बढ़ावा देने
और अलग अलग स्तर पर सीखने में मदद करने में इस परियोजना की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने एक सिंपल यूट्यूब चैनल से लेकर एक टेलीविजन प्लेटफॉर्म तक इसके विकास पर ध्यान दिया। अपने कार्यक्रमों के द्वारा UMT भी स्थानीय समुदाय में शिक्षा में योगदान दे रहा है और संस्कृति, संगीत, आध्यात्मिकता और बुनियादी जीवन शैली जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जिससे घर बैठे भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे नए प्रयासों की तरह UMTV को भी व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित संसाधन और पैसे की कमी की वजह से दैनिक प्रोडक्शन मुश्किल हो जाता है, जबकि भरोसेमंद इंटरनेट तक पहुंच और डिजिटल डिवाइस की कीमत कई दशकों के लिए रुकावटें बनी हुई हैं। बिजली चले जाने से भी प्रसारण के नियमित होने पर असर पड़ता है। इसके अलावा धम्मसंघ के सभी सदस्य सुसमाचार प्रचार के लिए मीडिया की अहमियत को नहीं पहचान पाती, जिसके लिए समुदाय में लगातार जानकारी और जागरूकता की जरूरत होती है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद धम्म बहने मीडिया को प्रचार एवं ट्रेनिंग के लिए एक प्रमुख जगह के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका लक्ष्य ज्यादा लोगों तक पहुंचना और युवाओं को अर्थ एवं विश्वास की तलाश में डिजिटल उपकरण के साथ ज्यादा जागरूक होकर जुड़ने में मदद करना है। सुसमाचार के शब्दों से प्रेरित होकर, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। धम्म बहने टेलीविजन, सोशल मीडिया एवं शैक्षणिक सामग्री के द्वारा मसीह को बताने का अपना मिशन जारी रख रहे हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत उसम्बरा की माता मरियम की धम्म बहनों का मीडिया के माध्यम से सुसमाचार प्रचार के कार्य पर चर्चा सुन रहे थे, जिसको सिस्टर एर्नेस्टिना पैट्रिक लास्वे SAC और सिस्टर क्रिस्टीना मसीवो CPS ने लिखा है। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका बेटी का सुख। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, विवाह के पश्चात हर लड़की के माता पिता की यही इच्छा रहती है कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे और उसे उसके ससुराल में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके घर में सुख शांति बनी रहे और उसके ससुराल के सभी सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बने और उसे दाम्पत्य जीवन का सुख मिले। बेटी के माता पिता को ससुराल के छोटे मोटे विवाद को खुद सुलझाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि बेटी जब मायका आती है तो माता जी एक एक करके ससुराल के सब सदस्यों के बारे में पूछना शुरू कर देती है और हर एक का कुछ न कुछ नुक्स निकाल ही लेती हैं। ससुराल में सास ससुर जेठ ननद देवर के साथ मिलकर रहने की बजाय अपनी अलग घर गृहस्थी शुरू करने के लिए दबाव डालती है। अगर शुरू में ही उनकी दखल अंदाजी को रोका न गया तो ऐसी माताएं जाने अनजाने अपनी बेटी के अच्छे भले घर के सुख चैन को बर्बाद कर देती हैं। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में ऐसी माताओं का मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका बेटी का सुख।
1: हाँ शीतल बेटी, आ यहाँ बैठ। अरे सुबह की आई है बेटी तू, अब फुर्सत मिली है तेरे साथ बैठने और बातें करने के लिए। और सुना, तेरे वहाँ ससुराल में सब कैसे हैं?
2: सभी अच्छे से हैं माँ।
1: और दामाद के क्या हाल हैं? ठीक ठाक तो हैं?
2: वो भी ठीक है माँ, उनका काम भी अच्छा चल रहा है। अभी प्रमोशन के लिए उनका ही नाम आया है, शायद अगले महीने तक उनका प्रमोशन भी हो जाएगा।
1: चल अच्छा है बेटी। और तेरे देवर का क्या हाल है? कहीं काम धंधे से लगा या अभी भी बड़ी बड़ी बातें करता हुआ घूम फिर कर टाइम पास कर रहा है?
2: नरेन भाई का तो अभी भी वही चल रहा है माँ, न घर की दुकान देखते हैं और ना ही कहीं और कोई काम धंधा चल रहा है उनका।
1: देख बेटी, सच बताऊं तो नरेंद्र को बिगाड़ने वाली उसकी माँ ही है, मतलब तेरी सास। उसी ने सिर चढ़ा रखा है नरेंद्र को, ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है, और ना ही उसे दुकान पर बैठने के लिए कहती है।
2: अरे माँ, अगर नरेंद्र भाई दुकान पर भी बैठे ना तो समझो दुकान का तो तिया पाचा ही कर देते हैं वो।
1: तिया पाचा कर देता है वो? कैसे? अब जरा मैं भी तो सुनूं।
2: अरे माँ, दुकान के गल्ले से पैसे उड़ाते तो उड़ाते हैं, अपने मिलने जुलने वाले को खूब उधार भी दे देते हैं। बाबूजी भी परेशान हो गए उनसे, इसलिए जेठ जी और बाबूजी भी दुकान पे बैठते हैं अब।
1: ओहो, तो अब तेरा देवर घर में ही हाथ की सफाई भी बताने लगा है। बढ़िया बढ़िया खबर सुनाई है तूने। घमंडी लोगों के घर को उनका भेदी ही ढाता है। और वो तेरे जेठ जेठानी के क्या हाल है? तेरे जाने से तेरी जेठानी के तो मजे हो गए होंगे।
2: नहीं माँ, जेठानी जी भी बहुत अच्छी हैं, अक्सर ही घर के कामों में मेरा हाथ बटाती रहती हैं। माँ जी तो उनको बहुत मना करती हैं कि बहू तू तब तक दूसरे काम देख ले, मगर वो
1: हाँ, मतलब तेरी सास चाहती है कि तू अकेले ही सारा काम किया करे, तुझे दम मारने की भी फुर्सत ना मिले, क्यों?
2: हाँ माँ, अब माँ जी के कहने से तो लगता ही यही है।
1: अरे क्या बात करती है तू, लगता क्या है, बात ही यही है। वरना तेरी सास को क्या पड़ी है तुम लोगों के काम में दखल देने की? उसे तो घर का काम चाहिए ना, वो होता तो है, वो बैठी रहे पटरानी की तरह, उसका काम तो हो रहा है ना।
2: हाँ ये बात तो है माँ, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं वो झट से आकर जेठानी से यही कहती है, बड़ी बहू ये रहने दे, ये कर लेगी, तू दूसरा काम कर ले, दूसरा देख ले।
1: वही तो मैं कह रही हूँ, जरा सोच वो ऐसा क्यों करती है। उसने भी बड़े बेटे और बहू को सिर चढ़ा रखा है, क्योंकि बड़ा बेटा ही तो बाप के साथ घर की दुकान में हाथ बटाता है और सब कुछ माँ के हाथ पर रखता है, तो ऐसे में बड़े बेटे बहू का ख्याल तो रखेगी ही ना वो।
2: हाँ माँ।
1: और तेरा पति मतलब दामाद अपनी नौकरी करता अपना खाता कमाता है, वो तो तेरी सास को अखरता होगा।
2: ये बात तो होगी।
1: और तेरा जेठ, वो तेरे साथ कैसे रहता है?
2: वो तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। कोई काम की बात हो तो ही बोलते हैं वो, वरना तो चुप ही रहते हैं।
1: क्यों शीतल, ये भी तो हो सकता है कि वो तुझसे बात ही नहीं करना चाहता हो, वो और उसकी औरत।
3: हाँ दीदी, कैसी हो तुम? अब सुनाओ।
2: पायल आ बैठ, मैं तो अच्छी हूँ। तू सुना, तू कैसी है और तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है?
3: मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और मैं भी अच्छी हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में कैसी बीत रही है?
2: हाँ अच्छी बीत रही है यार।
1: अरे काहे की अच्छी बीत रही है, मुझे क्या पता नहीं है, और चाहे तो तू खुद शीतल के मुंह से सुन ले।
3: ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं बहुत देर से पड़ोस के कमरे से यहाँ आंगन में होने वाली आप दोनों की बातें सुन रही थी। माँ, क्यों आप अपनी ही बेटी के सुखद जीवन में आग लगाने पर तुली हुई हो? क्यों अपनी बेटी को ससुराल में चैन से जीने नहीं देना चाहती हो?
1: अरे पहले तू खुद ही शीतल से पूछ ले कि वो ससुराल में किस तरह से रहती है। मैं तो कहती हूँ बेटी, अगर तुम्हें सचमुच में सुखी रहना है तो दामाद के साथ अलग रहने लग, तभी तू सुखी रहेगी।
3: माँ कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आप अपनी ही बेटी को गलत सलाह दे रही हैं। मैं कब से सुन रही हूँ, दीदी अपने ससुराल वालों की तारीफ भी करती है तो आप जबरदस्ती उनके किसी न किसी व्यवहार में कोई न कोई कमी बताकर उसे दोषी सिद्ध करने पर तुली हुई दिखाई देती हैं।
1: अब मैं अपने मन से तो कुछ नहीं कह रही हूँ, जो शीतल से सुन रही हूँ उसी आधार पर तो कुछ कह रही हूँ ना।
3: शीतल दीदी जो भी कह रही है, आप उसको अपने गंदे विचार से दबाव डालकर अपने नजरिए से वही दिखा और बता रही हैं जो आप देख रही हैं और जो आप चाहती हैं।
2: पायल रहने दे, शायद माँ ठीक कहती हैं।
3: क्या ठीक कह रही हैं दीदी, मैं जब से सुन रही हूँ माँ कभी तुम्हारी सास की बुराई करती है, कभी तुम्हारे देवर की बुराई करती है, तो कभी जेठ जेठानी की। वो तो मैं आ गई, वरना इन्होंने तो तुम्हारे संत जैसे ससुर को भी नहीं छोड़ना था। ये उनकी उनकी भी बुराई करने में कोई कोताही नहीं बरतती।
1: देख पायल, अब मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी बेटी के ससुराल वालों के विरुद्ध अपनी ही बेटी के कान भरूंगी।
4: मैं भी बहुत देर से तुम्हारी बुराई पुराने सुन रहा था सावित्री। शाबाश पायल बेटी, तुमने अपनी माँ को उसकी गलती बताई। मेरे तो समझ में नहीं आता सावित्री कि तुम अपनी ही बेटी के कान भरकर उसके सुखद भविष्य में क्यों खलल पैदा कर रही हो।
1: अरे मैं तो बस
4: तुम्हारे जैसी माएं ही अपनी बेटियों के ससुराल और परिवार में दखल देती हैं।

0: आपकी बात समझ गई। दरअसल मैं अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी ना कि अपनी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचने की तमीज़ भी खो बैठी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए।
1: इसमें माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है, और अगर माफ़ी मांगनी ही है तो अपनी बेटी से माफ़ी मांगो। उसे शिक्षा देनी ही है तो सास ससुर जेठ जेठानी का आदर करने की शिक्षा दो। देवर ननन देवरानी को प्यार से साथ में रखने की सीख दो।
2: यही तो मैं भी चाहती हूँ पापा।
0: ठीक है, अब मैं भी वही करूँगी जो तुम सब चाहते हो। मैं तो सचमुच तुझे सुखी देखना चाहती हूँ शीतल बेटी।
3: हाँ माँ।
4: बेटी का सुख। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अपर्णा सिंह, अंतरा करवड़े, आस्था उपमन्यु और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।